वाह, अलग ऊन से कर कमें अमरने पर रखी। नगल क्वास कहीं नजे अल ऊन से जमीन दी ऊन से अरंग लोंग न जन्ना लिए कमियाँ जी वह कम ये फिलन खास के न फिलन खास के वो ये ऊन ने की ऊन से सी क्यों बेलन से सी क्यों न कान क्यों एला न कोतेंगलम क्वा एला न सजमोतर रही एला न ऊहे न वो एला न बेल के किरे नगल अब इन को आलंग उन से आकर संभाल वो पिया काओ न पिया आकर सिंह न उड़ा किसी का मिला से आगे वो नमस्कार रहते बस नमक कमिंग इन लंग बस सूर की थी कि दायले उन से सुलवा न उन से एलाइन सुलवा न कारिंग आलंग को न एलाइन को आ न थर रही एल उन इन दायम वो इनको अब जाओ उन से जो असम बुरेप्पा के लिए जाए कि इला बुरेप्पा खबर देरिम बुरी मरंग क्या जान न देर को कम्बा देर से कारेल ना मरंग ऊन से जात खुंडी ना दो वाल ऊन से बेलंग आखे बा ना कोकुल व कहूंगे न पिया कहो पिया नहीं कहो न कहीं पिया पिया अपा आगे नलम बल पिया दुल्ले गए क्वादी सासों डोंगर खिंदेली ओता यूर संग नकी अकोल वालंग ओता यूर संग से डोंगर खिंदेल ना अकोल वालंग से सोर से डोंगर खिंदेल ना अकोल वालंग से उड़ा यूर सकाओ अकोल अलंग करिंग कमो इत्रिक अन्याल बुकिंग को कम अलंग ऊन से ऐसे को ना नकी अकोल अलंग ऊन से ऐसे कम कोई जरूर लोक लिया कहो ओ नस्कायम बंबगा कंग खिली दो दो अलब जलान जो इन्हें इन्हें लंग अलबस दायम वो पा नमस दीम बंब अपू जाइं नस जल न जा खिली ले आना मो जो इमान जो का दो अलें को आज इन दुले जिया से जुमो अलब दो अलें ने कि दुले लोग थे नंद दो अलें ने कि लू लोग थे दुले ला के वा दुले लोग में तोरे का जी आसा जल ने इल उसे वा नमस जुआला इल उसे आला एवं दो अस और दुले से जुमो न दो से देल लो जावे अला के वा दुले से वो कहने दुले ला देते और न कहने और ही दो अल नंदु अली मरंजी अल जमें अस दो अस दुले से जुमो जिकी काजुमो न ऐसे जुमो न नान से जुमो न जिकी जंग